10:10 होने के हैं स्टूडियो की घड़ी में 107 एफएम रेनबो पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप, जिसे आप सुनते हैं हर रोज इसी जगह इसी चैनल पर और 107 एफएम रेनबो के अलावा न्यूज एंड एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और आज की सुबह नॉनस्टॉप गपशप कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के साथ। और शर्मिष्ठा करती है आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। और चलिए शुरुआत हो चुकी है इस कार्यक्रम की और हफ्ते का दूसरा दिन जो कि पहले दिन की तरह ही बिजिएस्ट दिन है। जी हाँ, सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने ही कामों में हम सब फंसे रहते हैं और एक के बाद एक काम बस आते ही जाते हैं। लेकिन भाई हफ्ते की शुरुआत है तो थोड़ी सी एनर्जी तो ज़रूर हम सब में बनी हुई है, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता जो है वो ख़त्म होने की तरफ बढ़ता है उस तरीके से हमारी जो एनर्जी लेवल है वो भी शायद कम होती रहती है। खैर ये तो हफ्ते के ख़त्म होने की बात है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि पूरा दिन आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और बीच बीच में अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो आप क्या करते हैं? जी हाँ, अपने मूड को थोड़ा सा फ्रेशन अप करने की भी तो ज़रूरत है ना। और फ्रेशन अप करने के लिए छोटे छोटे टिप्स को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप आने वाले समय में और ज़्यादा तरोताज़ा अपने आप को फील कर सकें। इसके अलावा आज के दिन हम मना रहे हैं आशा भोसले को। जी हाँ, आशा भोसले के जन्मदिन के अवसर पर उनके अनगिनत गीतों को सुनते और सुनवाते हैं हम। वैसे तो आशा भोसले जैसे कलाकारों को हम कभी भी हमारे दुनिया से अलग नहीं कर सकते, लेकिन आज हमें मौका मिलता है उन्हें थोड़ा और ज़्यादा सुनने का और सुनवाने का। और चलिए कार्यक्रम में अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में इसी के साथ जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में होंगी बहुत सी बातें आज की हमारी कलाकार के साथ। इसके अलावा आज के खास दिन को लेकर भी करूंगी बात इसी कार्यक्रम में। और मुझे बताना भी तो है कि भाई दिन भर अगर आप बिजी हो होकर काफ़ी बोर हो जाते हैं तो छोटे छोटे टिप्स के ज़रिए आप किस तरीके से अपने आप को फ्रेशन अप कर सकते हैं, तो जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ। इस कार्यक्रम का साथ रहता है पूरे 11 बजे तक। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप आपकी रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के संग।

10:22 मिनट है स्टूडियो की घड़ी का समय और एक बहुत ही प्यारा सा तराना आप सुन रहे थे आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। इस गीत को सुनते सुनते चलिए इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि मैं बात कर रही थी, लंबे से बड़े से बिजी शेड्यूल से छोटे छोटे ब्रेक लेने की, जी हाँ, छोटा छोटा ब्रेक लेना हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये शायद हमें हमेशा समझ में नहीं आता, लेकिन इन ब्रेक्स को अगर हम लेते हैं तो आने वाले समय में और ज़्यादा आसान तरीके से हम हमारे कामों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और बेहतर तरीके से काम को करने के लिए ही इन छोटे छोटे ब्रेक्स को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, अगर आप ऑफिस में हैं और एक जगह बैठकर अगर आप के काम का शेड्यूल है तो बेशक आप काम करते रहिए, फाइलों के बीच आप घुसे हुए हैं, बिजी हैं और कुछ देर के लिए आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा और चाहते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए, तो म्यूजिकल ब्रेक आप 2-3 मिनट का, या फिर अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो 4-5 मिनट का म्यूज़िकल ब्रेक भी लिया जा सकता है। जी हाँ, चुनिए या सेलेक्ट कीजिए एक ऐसा गीत, ऐसा म्यूज़िक जिसे सुनते ही आपके दिलो दिमाग को एक सुकून मिल जाए, एक ऐसा सुकून, ऐसा प्यार भरा गाना आप सुन लीजिए, या फिर आपके मनपसंद का कोई भी गाना आप चुन सकते हैं जिसे सुनते ही आप 2-4 मिनट में या फिर 5 मिनट में बिल्कुल रिलैक्स्ड फील कर लें और दोबारा से अपने काम में जुड़ने की जो ताकत है आप में फिर से आ जाए। और एक ऐसा गाना चुने जिसे सुनते ही आप बिल्कुल फ्रेशन अप फील करें और बिल्कुल तैयार हो जाएँ आपकी अगली प्रस्तुति, अगले काम के लिए, कि आप अगला जो काम है वो बिल्कुल

ठीक ठाक तरीके से कर पाए और जितने भी काम आपके दिन भर के पड़े हुए हैं उन्हें देखते हुए या फिर उनके बारे में सोचते हुए आपको बिल्कुल भी परेशानी फील ना हो, इसीलिए आपने छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेना ज़रूरी है। अगर आप संगीत से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, संगीत को सुनना पसंद नहीं करते हैं और एक ही जगह पर बैठे बैठे आप काम कर रहे हैं और उसी दौरान लेना चाहते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, जो जगह आपके लिए निर्धारित है जहाँ पर बैठ कर आपने काम करना है, वहाँ से आप अगर छोटा सा ब्रेक लेते हैं तो जो टेबल आपके लिए सजा हुआ है, जिस टेबल पर आपकी हजारों चीज़ें रखी हुई हैं और ऐसी भीड़ जमी हुई है टेबल पर कि एक चीज़ को ढूंढने के लिए आपको हजारों चीज़ों को टटोलना पड़ता है, हजारों चीज़ों को इधर उधर करना पड़ता है ना, तो इन चीज़ों को इधर उधर करते हुए काफ़ी मैसी हो चुका है आपका जो टेबल है वो, तो अगर ब्रेक लेने के दौरान इन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक ठाक कर लिया जाए, पेन स्टैंड को थोड़ा सा ठीक कर लें, आपके पेन या फिर पेंसिल जो भी पेन स्टैंड में रखे हुए हैं उन्हें थोड़ा सा सजा लें, फाइल्स को, कागज़ों को अगर थोड़ा सा ढंग से सजा लें, चीज़ों को अगर इधर उधर ना करके थोड़ा सा सलीके से टेबल पर रखें, तो इन चीज़ों को करने से भी आप ब्रेक महसूस कर सकते हैं। और देखिएगा, इन चीज़ों को करने से ना टेबल को जब आप पूरे तरीके से सजा लेते हैं तो ये जो सजा हुआ टेबल है जिस पर आप बैठकर काम करते हैं, इसे देखकर ही ना मूड जो है वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है और फिर से आप फ्रेश फील करते हैं और इस फ्रेश मूड के साथ आप अपने बाकी पेंडिंग कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो चलिए, ये तो थी बातें। अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और बिजी शेड्यूल से अगर छोटा मोटा ब्रेक लेना चाहते हैं तो इस तरह के कामों को आप कर सकते हैं। इसके अलावा बताऊंगी कि अगर आप घर पर हैं और वर्क फ्रॉम होम वाले शेड्यूल के साथ आप काम करते हैं या फिर घर के रोज़मर्रा के कामों से थोड़ा बहुत ब्रेक लेना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करूंगी। लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बातें तो नहीं हो सकती है ना, इसीलिए अदनान सामी की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा तराना आप सभी सुनने वालों के लिए।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

10:30 है इस छोड़ी घड़ी का समय 107 FM रेनबो पर आप जुड़े हुए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 107 FM रेनबो के अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और आज की जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा को। और चलिए नॉनस्टॉप गपशप में अब गपशप करें आज के खास बर्थडे वाले सेक्शन को लेकर, यानी कि बताऊं आपको कि आज बॉलीवुड की दुनिया में आखिर कौन अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने जाने माने सिंगर आशा भोंसले के बारे में बताया कि जन्मदिन के अवसर पर उन्हें आज हम खास तौर पर याद कर रहे हैं। जी हाँ, खास तौर पर। वैसे तो ऐसे लेजेंडरी स्टार्स को कभी भी हम हमारे जीवन से अलग नहीं कर सकते। वैसे हर रोज़ अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से न जाने कितने ही गाने, उनकी आवाज़ में गाए हुए गाने हम सुनते हैं, सुनवाते हैं, उनसे जुड़ी बहुत सी बातें हम करते हैं। लेकिन आज खासकर उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें जब याद करने का हमें मौका मिलता है तो उन्हें याद भी करते हैं, उनके बारे में बातें भी करते हैं, साथ ही साथ उनसे जुड़ी गीत संगीत को भी सभी श्रोताओं तक हम पहुंचाते हैं। यही हमारी कोशिश होती है। और इसके अलावा एक और स्टार के बारे में भी बात करना चाहूँगी जो कि बॉलीवुड की दुनिया में अपना हैप्पी वाला बर्थडे मनाते हैं, और वो स्टार हैं इंद्रनील सेनगुप्ता। इंद्रनील सेनगुप्ता जाने माने अभिनेता और मॉडल हैं जो मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली सिनेमा तथा टेलीविजन में काम करने के लिए जाने जाते हैं। करियर की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो इंद्रनील ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी। मॉडलिंग के बाद उन्होंने कई लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिकों में

काम किया और फिर फिल्मों की ओर उन्होंने रुख कर लिया। प्रमुख फिल्में और काम की अगर बात की जाए तो इंद्रनील ने हिंदी के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी कई बेहतरीन अभिनय किए हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्म और प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो हिंदी फिल्मों में साल 2012 में फिल्म आई थी कहानी, इसके अलावा साल 2018 में फिल्म बनाई गई थी मुल्क, और इसके अलावा वेब सीरीज़ की अगर बात करें तो आर्य 3, जी हाँ आर्य सीजन 3, इस वेब सीरीज़ में भी हमने इंद्रनील सेन गुप्ता के बेहतरीन अभिनय को देखा था। और अगर बंगाली फिल्मों की बात करें तो ऑटोग्राफ के अलावा अपराजिता तुमी, इन फिल्मों में इंद्रनील सेन गुप्ता के बेहतरीन अभिनय को देखा गया है। तो ये तो थी बात एक्टर इंद्रनील सेन गुप्ता की। और फिर एक बार अगर संगीत की दुनिया में हम रुख करें तो एक और दिग्गज कलाकार भूपेन हजारिका को हम याद करते हैं आज के दिन। और भूपेन हजारिका का ये कहना था कि उनके जीवन में ब्रह्मपुत्र नदी का जो जुड़ाव है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके पीछे की अगर कहानी हम जाने तो वो कुछ इस तरीके से है। भूपेन हजारिका का बचपन असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बीता था। उनकी रचनाओं में इस नदी का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि ब्रह्मपुत्र ने न केवल संगीत को बल्कि उनके जीवन में समय के प्रति संवेदनशीलता को भी आकार दिया है। उनकी कविताएं और गीत इस नदी से भावात्मक रूप से गहराई से जुड़े हुए थे और वे इसे हमेशा अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। और ये कहना था डॉक्टर भूपेन हजारिका का। बातें होंगी और भी, जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ। और आशा भोंसले, जी हाँ, जिन्हें हम याद कर रहे हैं उनके गीत संगीत के माध्यम से, आशा भोंसले ने अपनी अलग आवाज़ से पूरी दुनिया में अपना जादू बिखेरा है। उन्होंने न केवल बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि 20 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाकर एक अनोखा रिकॉर्ड भी उन्होंने तैयार किया। और अनगिनत गीतों के माध्यम से आशा भोंसले हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित रहेंगी।

नॉन स्टॉप गपशप में अगले गीत की ओर रुख करें, उससे पहले बताऊं आज के खास दिन के बारे में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है, यानी कि आज का दिन डेडिकेटेड है पढ़ाई लिखाई के नाम। और पढ़ाई लिखाई आखिर हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, इसी बात को समझाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि साक्षरता क्या सिर्फ पढ़ना और लिखने तक ही सीमित है? क्या सिर्फ किसी व्यक्ति का नाम लिख लेना या फिर किसी वाक्य को लिख लेना ही साक्षरता तक सीमित रखा जा सकता है? खासकर आजकल के मॉडर्न ज़माने में क्या पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा सीमित है कि किसी एक व्यक्ति का नाम या फिर किसी वाक्य को लिख देने तक ही सीमित है? शायद नहीं, है ना? तो इसका जवाब थोड़ा और ज़्यादा समझने की हम कोशिश करें तो यही जवाब हमें मिलता है कि किसी व्यक्ति का नाम पढ़ लेना या फिर किसी व्यक्ति को किसी वाक्य को लिख लेना साक्षरता का पहला चरण हो सकता है।

जी हाँ जरूर हो सकता है, लेकिन आधुनिक दुनिया में इसकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। आज साक्षर व्यक्ति को जानकारी समझने, सही निर्णय लेने, रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने और समाज में अपनी बात रखने के लिए भी पढ़ने लिखने की क्षमता की जरूरत होती है। डिजिटल युग में साक्षरता का संबंध डिजिटल जानकारी को समझने, ऑनलाइन उपलब्ध सूचनाओं का सही इस्तेमाल करने और गलत जानकारी से बचने से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि साक्षरता को व्यक्ति के शक्ति जी हाँ शक्तिकरण और सामाजिक भागीदारी से जोड़कर देखा जाता है और इसी वजह से इंटरनेशनल लिटरेसी डे के तौर पर हर साल आज के दिन को मनाया जाता है। और आज के डिजिटल युग में पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है ये किसी के लिए शायद अनजाना नहीं है, और ख़ासकर जब स्मार्टफोन का ज़माना है, डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जिनके बारे में जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन का जो इस्तेमाल है उसे कम ज़्यादा हम सभी लोग करते हैं, और ऐसे में बहुत सी जानकारियां ऐसी हैं जिनके बारे में जानकर रखना हम सब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इसीलिए किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी वाक्य को सिर्फ लिख लेना और पढ़ लेना खासकर आजकल के समय में काफ़ी नहीं है, खासकर जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल स्टूडियो घड़ी बता रही है कि 10:46 है स्टूडियो घड़ी का समय, और नॉन स्टॉप गपशप करते हुए काफ़ी सारा समय मैंने और आपने एक साथ पार कर लिया है इस कार्यक्रम में, और भी थोड़ा बहुत समय हमारे पास बचा हुआ है, तो ऐसे में सुनवाऊँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा तराना सुखविंदर सिंह की आवाज़ में, और उसके बाद बातें करेंगे कुछ और, है ना। लेकिन फिलहाल ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

यस दास, और आशा भोसले की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस बहुत ही प्यारे से तराने को। और इस गीत को सुनते सुनते चलिए उस अधूरी सी बात को पूरा कर लिया जाए जिसे हमने कुछ देर पहले अधूरा छोड़ा था, यानी कि बात कर रही थी बिजी वाले शेड्यूल से थोड़ा सा ब्रेक लेने की। तो अगर आप का जो शेड्यूल है वो वर्क फ्रॉम होम वाला है या फिर रोज़मर्रा के काम से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं तो अपनी जगह से थोड़ा सा उठिए और अपने घर का जो किचन है, रसोई है, उसकी तरफ रुख कर लीजिए। और अगर खाने पीने के शौकीन हैं तो थोड़ा सा रसोई को टटोला भी जा सकता है और थोड़े से बर्तनों के ढक्कन को खोल कर ये देखा जा सकता है कि आज आखिर खाने में क्या बन रहा है, क्या बन चुका है या फिर क्या बनने वाला है। और अगर आप खाने पीने के शौकीन इतने ज़्यादा नहीं हैं तो फिर खिड़की से झाँक कर बाहर के सुंदर नज़ारे का तो आप देख ही सकते हैं। और इस तरीके से एक छोटा सा ब्रेक भी लेना हो जाएगा और दोबारा आप अपने काम में ध्यान लगा सकते हैं। तो ये तो थी बिजी शेड्यूल से छोटे छोटे रिलैक्सिंग मूड को किस तरीके से आप तरोताज़ा कर सकते हैं। और चलते चलते आज के नुस्खे को भी बताते चलूँ। बरसात का मौसम है और ऐसे में कपड़े जो हैं वो हमारे जल्दी से सूखते नहीं हैं और कम से कम एक से दो दिन तो लग ही जाते हैं कपड़ों को सूखने में। और ऐसे में कपड़ों से ना एक अजीब सी बदबू आने लग जाती है और इन बदबू की वजह से कपड़ों को पहनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कपड़ों से बदबू बरसात के मौसम में ना आए इस वजह से एक छोटा सा नुस्खा आप ट्राई कर सकते हैं और वो ये है कि जिस पानी में आप कपड़ों को धोने वाले हैं उस पानी में आप नींबू के रस को मिला सकते हैं, या फिर नींबू के रस को अगर आप नहीं मिलाना चाहते तो फिर बेकिंग सोडा को मिलाकर भी कपड़ों की जो बदबू है उसे आप बरसात के मौसम में दूर कर सकते हैं। या फिर एक और उपाय है जिसे तो हम सब जानते हैं कि बरसात के मौसम में वैसे तो धूप हमें जल्दी से नसीब नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर धूप नसीब हो भी जाती है तो जो कपड़े हैं हमारे ठीक ठाक तरीके से घर के अंदर नहीं सूख पाते हैं, उन्हें धूप जैसे ही निकलती है तो धूप में देकर आप कपड़ों को अच्छे तरीके से सुखा सकते हैं और उसके बाद कपड़ों की जो बदबू है वो दूर हो जाती है। तो ये तो थी कुछ आसान टिप्स जिसकी वजह से बरसात के मौसम में जो बदबू परेशान

होती है करती है हमें कपड़ों की वजह से, और गीले कपड़ों की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और पहनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इन छोटे छोटे टिप्स को अपना कर ये जो परेशानी है इसे हम दूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए करते हैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त, और जाने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा रहा आप सभी सुनने वालों के लिए, जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ, मिलूंगी बहुत जल्द, समय रहेगा 11:10।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर की आवाज में फिल्म लव आजकल से ये गीत, और गीत के बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने, संगीत से सजाया था प्रीतम ने। दोस्तों इस गीत में बहुत ही ट्विस्ट थी, और जैसे कि आप जानते हैं कि सैफ अली और दीपिका पादुकोण लव आजकल फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी ये एक्टिंग और किरदार निभाए, और पिक्चर ठीक ठाक ही थी, अच्छी थी, गीत बहुत अच्छे थे। वैसे दोस्तों ये 3 का शो जो है हमारा, 3:10 अभी हो चुके हैं स्टूडियो में, और 3 का तड़का में कुछ ऐसे ही गीतों का सफर और कारवा मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि अगले कुछ पलों पर मैं और सिर्फ आप रहेंगे, ढेर सारी बातें होंगी और हमारे बीच बहुत सारी ऐसे गुफ्तगु होंगे जो गीतों के माध्यम से आप और मैं समझ सकेंगे। आइए सुनते हैं अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज में फिल्म साया से ये गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में वो जादू है कि आपको अब तक तो मदहोश कर ही चुके होंगे। और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया था एमएम करीम ने। तो दोस्तों ये तो तय ही था कि आप इस गाने में खो ही जाते। वैसे हमारा तीन का तड़का का शो है ही कुछ ऐसा ही, लेकिन अभी इस वक्त हो चुका है 3:16 और चलते हैं हम लोग, सुनते हैं परियोजना प्रस्तुति।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: परियोजना प्रस्तुति में आज हम बात करेंगे उज्ज्वला योजना के विषय में। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की उज्ज्वला योजना एक बेहद सफल ऊर्जा संरक्षण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के हर घर में कम कीमत पर एलईडी बल्ब और उपकरण पहुंचाकर बिजली की भारी बचत करना है। अक्सर लोग नाम की समानता के कारण भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि बिजली बचत वाली उजाला योजना एलईडी बल्ब के लिए और गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाली योजना का नाम है उज्ज्वला योजना। तो हम आज बात कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण यानी कि उजाला योजना के विषय में। तो दोस्तों शुरुआत इस योजना को 1 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बचत लैंप योजना के स्थान पर लॉन्च किया गया था। क्रियान्वयन इसी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL और स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों जैसे डिस्को MS के संयुक्त प्रयास से चलाया जाता है। पारंपरिक पीले बल्बों और CFL को हटाकर उसकी जगह उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब, LED ट्यूबलाइट और ऊर्जा सक्षम वाले पंखे, एनर्जी एफिशिएंसी फैंस को बढ़ावा देना ताकि कार्बन उत्सर्जन और बिजली बिलों में कमी आ पाए। वैसे इसका कम कीमत बाजार मूल्य से काफी कम और किफायती दरों पर उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे बिजली की बचत होती है क्योंकि एक साधारण एलईडी बल्ब पारंपरिक बल्ब की तुलना में 85% तक कम बिजली की खपत पूरी कर सकता है और CFL के मुकाबले भी अधिक टिकाऊ होता है और इसका EMI आसानी से भुगतान हो सकता है। जैसे शुरुआत में उपभोक्ताओं को ये सुविधा भी दी गई है कि वे बल्ब के पैसे एक बार में देने के बजाय अपने हर महीने के बिजली बिल के साथ किस्तों यानी कि EMI में दे सके। वारंटी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले LED उपकरण पर तकनीकी खराबी के लिए निश्चित समय जैसे 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी भी प्रदान की जाती है। और आप सुन रहे थे अभी प्रधानमंत्री उजाला योजना के विषय में, जो LED बल्ब वाली के तहत वितरण केंद्र या आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे थे।
1: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म हमारे सुपर 30 का ये गीत, जिस पर ऋतिक रोशन ने कमाल का अभिनय किया था। और अक्सर लोग इसी धोखा में रहते हैं कि ऋतिक सिर्फ डांस ही कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 3:25 हो चुके हैं और हमारा 3:30 का शो है उमंग कार्यक्रम, जिसके लिए वक्त की नजाकत को देखते हुए जल्दी से आपको एक गीत सुनाए देती हूँ और उसके बाद हम चलेंगे कार्यक्रम उमंग सुनने के लिए अरिजीत सिंह की आवाज में। ये गीत फिल्म वार से है।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म वार से ये गीत। लेकिन अभी वक्त है हमारे उमंग कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं उमंग कार्यक्रम। और इसी के साथ रिंकू को इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जीवन में सुख कितना मिला ये मत गिनिए, बल्कि ये देखिए कि आपके कारण कितने दिलों में मुस्कान आई, यही सच्ची कमाई है। श्रोताओं, ये सुविचार भेजा था आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह चंघेल, मूरज चंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष चंघेल और नंदिनी चंघेल जी ने। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। मोताला महाराष्ट्र से रतनमाला सुरलकर, विजय सुरलकर जी लिखते हैं, ज्ञान शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर उमंग कार्यक्रम सुनना अब हमारी आदत बन चुका है। प्रत्येक प्रस्तुति कुछ नया सीखने का अवसर देती है और सामान्य ज्ञान में निरंतर वृद्धि करती है। उपयोगी जानकारी, रोचक विषयों और उत्कृष्ट प्रस्तुति के कारण ये कार्यक्रम श्रोताओं के लिए सचमुच प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। विमलेश जी, अजीत जी और उमंग की पूरी टीम को इस सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और वारिस अली खान, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन

0: का संदर्भ एनसीईआरटी की कक्षा 6 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 में संदर्भित है। जरा अंदाजा लगाइए श्रोताओ, मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा की, भारत की उस साहसी महिला की जिसने अपना एक पैर खोने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। आइए जानते हैं कौन है अरुणिमा सिन्हा, आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थीं। उनका जीवन खेल, सपनों और आगे बढ़ने की उम्मीदों से भरा था, लेकिन वर्ष 2011 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 11 अप्रैल 2011 की बात है। वो CISF की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट करने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें इसी दौरान चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वे रेलवे ट्रैक पर गिर गईं और दुर्भाग्य से दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक पैर काटना पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में पड़े पड़े उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को यूं ही समाप्त नहीं होने देंगी। अरुणिमा के सामने कठिनाइयां कम नहीं थीं। उन्हें कृत्रिम पैर लगाना था, उन्हें फिर से चलने का अभ्यास करना था। धीरे धीरे वे चलना सीख गईं और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शरीर में दर्द था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो ऐसी परिस्थिति में एक आम इंसान नहीं ले सकता। उन्होंने पर्वतारोहण सीखने का निर्णय लिया। शायद वे दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती थीं कि दुर्घटना ने उनका शरीर बदला है, लेकिन उनके मनोबल को नहीं। फिर क्या था श्रोताओ? उन्होंने प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल से संपर्क किया और प्रशिक्षण शुरू किया। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी फिर से चलना सीख रहा था, वो पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण आसान नहीं था। कृत्रिम पैर के साथ चलना, चढ़ना, गिरना और फिर उठना, हर कदम एक चुनौती था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार आ ही गया वो दिन। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया, और वो भी एक पैर खोने के मात्र 2 साल बाद। श्रोताओ, हम तो कहना चाहेंगे कि वहां पहुंचकर उन्होंने केवल एवरेस्ट पर विजय नहीं पाई थी, उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके शरीर से बढ़कर उसके संकल्प में होती है। विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूंगी, बहुत कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार संकल्प करके तो देखिए। इसलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्रोता मित्रों, अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई आने के बाद भी जीवन आगे बढ़ सकता है। श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की? 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। ताजी जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF, और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT Official YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है छुपन छुपाई। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम मनोरंजक ढंग से इस पारंपरिक खेल के बारे में बताता है।
1: चलो चलो चलो चलो छुपन छुपाई खेलते हैं।
2: एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे।

0: जी हर बार मैं ही दान देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ।
1: बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
2: उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला।
0: एक दो तीन, सब छुप गए ना। 98, 99, 100, लगता है सब छुप गए। चलो अब मैं ढूंढता हूँ सबको। अरे इधर तो कोई भी नहीं है। दरवाजे के पीछे देखता हूँ, यहाँ पक्का कोई ना कोई छुपा होगा।
2: मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया।
3: मोहित, अरे नहीं, हर बार मैं ही सबसे पहले पकड़ा जाता हूँ।
2: जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा।
0: अब मैं कमरे में देखता हूँ, लगता है अलमारी के पीछे कोई छुपा है।
2: बबली अलमारी के पीछे मिल गई।
0: बबली तुम अलमारी के पीछे हो?
3: धप्पा!
0: मोहित और बबली दोनों आउट हो गए।
2: मारिया पलंग के नीचे मिल गई।
0: मारिया तुम पलंग के नीचे हो?
4: नहीं, मैं पलंग के नीचे नहीं हूँ।
5: अंदर छुपा।
0: मारिया
3: धप्पा!
4: अरे नहीं।
2: उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई।
6: दादी दादी
4: दादी, हिला मत, जीत आया है, वो मेरे धप्पा बोल देगा।
0: लगता है सिमरन दादी के पीछे छुपी हुई है, अभी जाके देखता हूँ। और ये गया, ये
5: जोर से
3: सिमरन धप्पा,
4: फिर पकड़ लिया।
0: अब बची है नाजिया, कहाँ हो सकती है?
2: जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा।

0: यहाँ तो नहीं है, पेड़ के पीछे देखता हूँ, इधर भी नहीं है। अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा।
0: अरे नाजिया कहाँ छुपी हो?
1: नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया।
0: जी धप्पा। ओहो, अरे नहीं, मेरी फिर से बारी आ गई।
1: जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया।
0: एक दो तीन।
2: छुपन छुपाई है ना मजेदार खेल। तो बच्चों अब सोचो और जरा बताओ कि छुपन छुपाई खेलते समय तुम अपने घर में कहां कहां छिप सकते हो, और यदि खेलते खेलते चोट लग जाए तो तुम क्या करोगे। और हाँ, ये भी मालूम करो कि कौन कौन से खेल हैं जो घरों में खेले जाते हैं और कौन कौन से खेल हैं जो बाहर खेले जाते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छुपन छुपाई। छुपन छुपाई के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम छुपी प्रतिभा। इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि हर बच्चा अनोखा है और उसमें बहुत सी प्रतिभाएं छुपी होती हैं। जरूरत है उन प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने की।
4: साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दी थी जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हमने खासकर उन बच्चों के विषय में चर्चा की थी जिनकी भिन्नता छोटी उम्र में ही नजर आ जाती है, पर उनमें से अधिकांश देखने में और बच्चों के समान ही लगते हैं और उनकी पहचान करने में कठिनाई होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाई, सामाजिक एवं शारीरिक गतिविधियों में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और अध्यापक गण उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं जिससे कि ऐसे बच्चों का जीवन बेहतर और सार्थक हो सके। तो आइए आज चलते हैं एक स्कूल में। इस स्कूल के शिक्षक बच्चों के विकास में गहरी रुचि रखते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो आखिर क्यों, उसकी क्या समस्या है और कैसे उस बच्चे की मदद की जा सकती है। साथियों, इस स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं, तो शिक्षकों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की समस्याओं के विषय में किसी डॉक्टर की राय ली जाए, और इस अवसर पर इन बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाए और यथासंभव उनका समाधान भी खोजा जाए। और एक दिन
5: साथियों, आज मैं पूरे स्कूल की ओर से डॉक्टर पुष्पा का स्वागत करता हूं।
6: आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद।
7: नमस्कार।
6: नमस्कार।
5: आपका धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, और हम आशा करते हैं कि आपके परामर्श और विस्तृत अनुभव का हम सबको अवश्य लाभ मिलेगा कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। और साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय के सभी उन अध्यापकों का जिनकी रुचि और प्रयास के कारण यह संभव हो पाया। आज हमारे बीच में ऐसे विशेष बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। और हां, सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे। इन्हें कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन ये कई बातों में दूसरे बच्चों से बहुत आगे हैं। तो चलिए आज की इस विशेष बैठक को शुरू करते हैं। रेनू जी, आप
7: जी जी,
5: आप कह रही थी कि आपकी कक्षा में एक बच्ची है मीना, आप मीना के बारे में हमें कुछ बताइए।
7: जी, मैं आपको इस बच्ची मीना से मिलवाती हूँ। देखिए, मेरी मीना पढ़ाई में बहुत तेज है, इसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं और ये इस बार भी चौथी कक्षा में प्रथम आई है। और हाँ, इसकी लिखाई भी बहुत सुंदर है। मीना
8: जी,
7: तुम्हें पढ़ाई कैसी लगती है?
8: दीदी, मुझे तो पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी लगती है। मुझे स्कूल आना और पढ़ना बहुत पसंद है।
7: और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है?
8: जी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं और बच्चों की तरह तेज नहीं दौड़ पाती, मेरे एक पैर में तकलीफ है।
6: अच्छा, ये बताइए, ऐसा मीना के साथ कब से है? क्या इसे बचपन से ही ये तकलीफ है?
7: डॉक्टर पुष्पा, इसकी माँ ने मुझे बताया था कि जब ये पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर 2 साल की उम्र में बहुत बीमार हो गई, इसको तेज बुखार हो गया और इसके इलाज में देर हो गई। उसके बाद इसके बाएं पैर की ताकत जाती रही।
6: अच्छा।
7: जिससे ये स्वाभाविक रूप से चलने फिरने से असमर्थ हो गई। डॉक्टर ने बाद में बताया कि मीना को पोलियो हो गया है।
5: डॉक्टर पुष्पा, पोलियो के विषय में हमें जरा विस्तार से बताएंगे?
6: देखिए, पोलियो एक ऐसा रोग है जो केवल हाथों या पैरों पर असर करता है।
5: अच्छा।
6: इसका असर जिस हाथ या पैर पर होता है उसका विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता। पोलियो से प्रभावित हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें शक्ति कम हो जाती है।
7: डॉक्टर पुष्पा, क्या पोलियो का असर देखने सुनने या बोलने पर भी होता है?
6: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें देखने, बोलने, सुनने और समझने में कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए
7: जी,
6: क्या मीना के माँ बाप मीना को बाद में भी डॉक्टर के पास ले जाते थे?
7: जी हाँ, उसकी माँ ने मुझे बताया था कि वे लोग उसे ले तो जाते थे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पर इसके पहले ही उसके बाएं पैर की हड्डियाँ बिल्कुल पतली हो गई थी, उसमें खड़े होने की ताकत नहीं रही और इसका बायां पैर इसके दाएं पैर से छोटा हो गया।
6: देखिए, समय से दवाई न लेने से या समय पर इलाज न कराने से ये समस्या आ सकती है
5: जी।
6: अब इसीलिए हमारी सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह पोस्टर इश्तिहार लगवाए हैं। आपने रेडियो टीवी पर सुना होगा कि आजकल तो सरकार ने पोलियो हटाओ अभियान चलाया है, जिसमें 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है।
7: जी हाँ, पर डॉक्टर पुष्पा, अब हम मीना की मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
6: जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, वो कक्षा में और बच्चों की तरह पढ़ सकती है। हाँ, शारीरिक क्रियाओं में या को करिकुलर एक्टिविटीज में उसको इस प्रकार शामिल कीजिए कि वो कार्य उसकी क्षमता के अनुसार हो।
5: जी। नीलम जी, तुमने कहा था कि तुम्हारी क्लास में सरिता है जिसके बारे में तुम चर्चा करना चाहती हो।
9: जी डॉक्टर पुष्पा, मेरी कक्षा में इस सरिता ने अभी दाखिला लिया है। ये व्हील चेयर में आती है, ये 6ठी कक्षा में पढ़ती है और ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है।
6: अच्छा, एक बात बताओ
9: जी,
6: सरिता व्हील चेयर का प्रयोग कब से करती है?
9: इसकी माँ ने बताया था कि व्हील चेयर का प्रयोग इसने इसी साल से शुरू किया है। 4 साल की उम्र तक तो सरिता और बच्चों की तरह खेल कूद में बहुत अच्छी थी, परंतु धीरे धीरे इसके पैरों में कमजोरी आती गई और फिर इसे इस कुर्सी का सहारा लेना पड़ा।
6: सरिता, तुम्हें और भी कोई परेशानी है?
8: हाँ मैडम जी, मुझे हाथ में कमजोरी लगती है और गर्दन घुमाने में कठिनाई होती है।
9: डॉक्टर पुष्पा, कहीं ये समस्या बढ़ तो नहीं रही है? क्या इससे इसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा?
6: हाँ, ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी अवस्था का शिकार है जिसमें मस्कुलर डिसफंक्शन यानी गत्यात्मक विकार होता है और जो हर बच्चे में अलग अलग दिखाई देता है।
9: जी,
6: ऐसे बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। इस अवस्था में धीरे धीरे सारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं।
9: अच्छा।
6: पर इसका समझने की योग्यता और पढ़ाई लिखाई पर असर नहीं पड़ता।
9: अच्छा।
6: ऐसे बच्चे 12वीं तक और उसके आगे भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं।
9: ऐसा विकार होता क्यों है?
6: ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चों के खून में कुछ रसायन जिसको CPK कहते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है।
9: हम इसमें बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं डॉक्टर पुष्पा?
6: सरिता, अब तुम अपनी कक्षा में जा सकती हो। हाँ
8: जी मैडम।
6: हाँ, तो इनकी मदद करने के लिए आप इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको जितना प्यार दे सकते हैं उतना दें।
9: जी।
6: इन बच्चों की आयु सीमित होती है, इसलिए उनसे उच्च पढ़ाई और नौकरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
9: जी।
6: केवल बच्चों को और उनके माता पिता को प्रोत्साहन देकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और बच्चों की तरह इनको काम देते रहें।
9: जी ठीक है।
5: हाँ, दीपिका जी, आप भी कुछ किसी बच्चे के बारे में बात करना चाहती थी?
9: जी डॉक्टर पुष्पा, ये सीमा है, ये भी सरिता की तरह पहिए वाली कुर्सी पर है। सीमा, ये डॉक्टर पुष्पा हैं।
10: नमस्ते।
5: डॉक्टर पुष्पा, ये हमारे स्कूल की अध्याप

0: ये का रेनू जी है ना, उनकी बहन की बेटी है।
1: अच्छा अच्छा, सीमा कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तुम?
2: मैं सातवीं में पढ़ती हूँ।
1: रेनू जी जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए।
3: डॉक्टर पुष्पा, मैंने और नीलम जी ने इसकी माँ से विस्तार में बातचीत की है।
1: अच्छा।
3: ये जब खड़ी होने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। बचपन से ही हर काम को सीखने में पीछे रह जाती है। जब ये 10 महीने की थी तब भी अपनी गर्दन अन्य बच्चों की तरह ठीक से संभाल नहीं पाती थी, और अब भी ये ठीक से चल नहीं सकती। हर समय इसको इस पहिए वाली कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है।
4: डॉक्टर पुष्पा, सीमा बहुत होनहार है। ये बहुत कोशिश करती है कि और बच्चों के साथ गेंद से खेले, लेकिन ये गेंद पकड़ ही नहीं पाती है। गेंद इसके हाथ से गिर जाती है।
3: जिस तरह से और बच्चे अपने हाथ से खाना खाते हैं, उस तरह ये खा नहीं सकती। इसको खाने में समय लगता है। कभी कभी तो इसके हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं।
1: अच्छा।
3: जब हाथ में अकड़न ज्यादा हो जाती है तो इसके हाथ से खाना गिर जाता है।
4: डॉक्टर पुष्पा, कभी कभी सीमा के मुंह से लार भी टपकती है और चेहरे की मांसपेशियां भी अकड़ सी जाती हैं।
3: शायद इसलिए ही दूसरे बच्चे इसको कुछ अलग तरह से देखते हैं।
1: जी,
3: कुछ लोगों का शायद ये मानना है कि ये कोई छूत की बीमारी ना हो,
1: पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है।
4: सीमा, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो। तुम्हें क्लास में जो काम करने के लिए कहा जाता है वो सब समझ में आता है क्या? ये सब डॉक्टर पुष्पा को बताओ।
2: हाँ, संभव तो आता है पर लिख नहीं सकती।
3: इसे देखने और बोलने में कुछ परेशानी होती है। सवाल तो कर लेती है पर उत्तर देने में कठिनाई होती है।
1: अच्छा।
3: और ये साफ साफ बोल नहीं पाती, इसलिए लोग इसकी बात ठीक ठीक समझ नहीं पाते।
4: रेनू जी, इसको ये समस्या कब से है?
3: ये बहुत ही छोटी थी, करीब 4 महीने की रही होगी, तब ये पालने से गिर पड़ी थी।
1: अच्छा।
3: इसके सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी। शायद हो सकता है ये चोट का प्रभाव हो।
4: डॉक्टर पुष्पा, इसको समस्या क्या है?
1: ऐसा लगता है कि ये दिमागी पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। इसको केवल शारीरिक विकलांगता ही है।
4: ओ।
1: क्योंकि ये 7वीं कक्षा में पढ़ती है तो इसके दिमाग पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
4: डॉक्टर पुष्पा, हम इसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं?
1: देखिए, इसको हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराइए।
0: जी। आज हमने 3 प्रकार की गत्यात्मक विकलांगताओं के बारे में जानकारी हासिल की।
4: जी।
0: पहली पोलियो, दूसरी मांसपेशी विकृति और तीसरी मानसिक पक्षाघात।
4: डॉक्टर पुष्पा, आप इसके बारे में कोई उपाय बताएंगे?
1: इन बच्चों के लिए कुछ अन्य मदद की जरूरत भी पड़ती है, जैसे कि संसाधन यंत्र आदि, अच्छा आहार और धीमी गति से पढ़ाना।
0: डॉक्टर पुष्पा, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं।
1: अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
0: नमस्कार।
5: तो साथियों, डॉक्टर पुष्पा ने आज के वार्तालाप में हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम इनकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हर कार्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, क्रमानुसार लगाकर, थोड़ा थोड़ा करके बार बार अभ्यास कराना। इसके अलावा यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि गत्यात्मक विकलांगता अन्य प्रकार की भी हो सकती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कठिनाई होने से, जोड़ों के दर्द, विटामिन डी की कमी, जन्म के साथ बच्चों में सख्त जोड़ों का होना, शरीर के किसी अंग का गलत जगह होना, देरी से पैदा होना, किसी दुर्घटना में अंग का कट जाना, कोई अंग न होना इत्यादि। साथियों, याद रखिए, इन बच्चों को हमेशा आपका प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए।

0: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
1: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
0: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
2: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
3: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग, जिसमें हम दिल्ली से सीधे विशेष कार्यक्रम की तरह पेश कर रहे थे, क्योंकि आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं 3 का तड़का, जिसमें हम ये बात कर रहे थे। दोस्तों समय हो चुका है, स्टूडियो की घड़ी में 3:59:32 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम 3 का तड़का रिंकू के साथ। जी हाँ, इस वक्त अभी जाने का, अलविदा कहने का समय आ चुका है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
6: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर।

0: 26 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: गाने बाजू ओने रेडियो सुनछो 107 FM रेनबो सात सुरे सारा दिन, सात सुरे सारा दिन।
3: শুনছো ক্যাফে কলকাতা,
4: ক্যাফে কলকাতা
3: 107 FM রেইনবোতে, ক্যাফে কলকাতা।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Purani dino ka safar, purani geeto ka silsila. आप सुन रहे हैं छाया लोग 107 FM रेनबो पर पुराने दिनों का सफर पुराने गीतों का सिलसिला छाया लोग
2: प्यार भरे नगमे।
3: जी हाँ, स्वागत है दोस्तों आपका 107 FM रेनबो पर रिंकू के साथ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोक। जी हाँ, प्यार भरे नगमे का आज दिन है मंगलवार। और क्या बात है, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, यादें 90s और 2000s के बीच घूम रही है। दोस्तों कहते हैं कि संगीत और मोहब्बत दोनों का रिश्ता बहुत ही पुराना है, क्योंकि बिना संगीत के मोहब्बत अधूरी है और बिना मोहब्बत के सुर फीके लगते हैं। वो कहते हैं कि मिले जो सुर तो एक

नया जहान बनता है, गीत जब दिल से निकले तो आशिक का मकान बनता है। जी हाँ, चलिए शुरू की इस महफिल को और प्यार भरे नगमे को सुरों के साथ सजाते हैं। सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म राजकुमार से ये गीत। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। 1990 के दशक के शतबाहर गानों में ये उदित नारायण और अलका याग्निक और भी अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और ना जाने कितने कविता कृष्णमूर्ति जी भी, इन सभी गायकों ने अपने इस जमाने में हमारे कानों में जो धुन छेड़ी थी ना, वो आज भी हमारे दिल से होके गुजरती है। वैसे गुजरे हुए दौर की वो हर बात पुरानी याद आती है, 90 के दशक के गानों में एक अलग ही रूहानी बात आती है। दोस्तों जब बजती है हमारे बीच इन सब गायकों की, इन सभी गीतों की धुने, तो दिल को छूकर बस दोस्तों की सौगात याद आती है। सुनते हैं कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में ये गीत फिल्म हेलो ब्रदर से।

दोस्तों, कुमार शानू अलगा याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म हेलो ब्रदर से ये गीत। सुधाकर शर्मा, फैज अनवर और हिमेश रेशमिया का ये ताबड़तोड़ एक साथ का सांझ देना इस गीत को भरपूर कर देता है। वैसे इस फिल्म में सलमान खान और हमारी रानी मुखर्जी के साथ अरबाज खान थे, जो कि फिल्म में चांदनी का चौंद लगा रहे थे। वैसे दोस्तों, गीतों का यह सफर चल रहा है। 7:18 हो चुका है स्टूडियो की घड़ी में और आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर रिंकू के साथ प्यार भरे नगमे। तो आइए उस नगमों को बरकरार रखते सुनते हैं एक बार फिर अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज में फिल्म दिल क्या करे से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, अलकैया अग्निक और उदित नारायण की आवाज में आप ये सुन रहे थे फिल्म दिल क्या करे से। वैसे ख्वाबों की दुनिया में जब कोई अपना रहने आता है तो ये नादान दिल बस उसी के धुन में ही खो जाता है, फिर दिल क्या करे। ये तराना जब भी गूंजता है हवाओं में, हमारी दोस्ती हर लम्हा और हसीन भी हो जाती है। दोस्तों 107 FM रेनबो पे आप सुन रहे हैं प्यार भरे नगमे। आइए सुनते हैं अलकैया अग्निक उदित नारायण की आवाज में और साथ ही अभिजीत और चित्रा की आवाज में बैक टू बैक दो गीत।

जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत और वफा का कोई इम्तिहान नहीं होता। तुम्हारे भी नाम नहीं होता। वैसे दोस्तों, अभिजीत और हेमा सरदेसाई की आवाज में एक और गीत आपके लिए।

0: जी हाँ दोस्तों, किसी न किसी को किसी पर एतबार तो हो ही जाता है और एक अजनबी सा चेहरा भी कहीं ना कहीं तो यार हो ही जाता है। वैसे खुशियों से नहीं होती मोहब्बत सदा, किसी की कमियों से भी कभी प्यार हो जाता है। और आप सुन रहे थे स्टाइल फिल्म से अभिजीत और हिमासी देसाई की आवाज में ये गीत। गीत के बोल लिखे थे अब्बास ने, संगीत से सजाया था संजीव दर्शन ने। वैसे दोस्तों 107 एफएम रेनबो पे आप सुन रहे हैं प्यार भरे नगमे और छायालोक। छायालोक में मैं बात कर रही हूँ रिंकू, और रिंकू के साथ आप बने हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं गीतों पे लड़ियां।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
2: जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हैं आप?
3: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
2: तो चांद को ही देखिए ना।
3: मगर वो सांस नहीं लेता।

लिख सकूं तुझे तो अल्फाज कहां से लाऊं, एक सुकून की तलाश में भटकता यहां वहां, अपने ही छूट गए तो फिर सुकून कहां से पाऊं। फूल समझ के कांटों से जो दिल है लगाया, इलाज है जख्म दिल अब कहां से लाऊं। आप सुन रहे थे उदित नारायण को फिल्म रेफ्यूजी से। जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत। दोस्तों 107 एफएम रेनबो पे आप सुन रहे हैं प्यार भरे नगमे, छह लोग और अभी रामशंकर, शैकान महादेवन और इसकी आवाज में सुनते हैं गीत फिल्म बिच्छू से।

जी हाँ दोस्तों, प्यार होना जाए तुझे प्यार होना जाए, क्योंकि ये शो ही कुछ ऐसा है कि इस तरह की बातों से और गीतों से तो प्यार हो ही जाता है। वैसे सच्चा प्यार ना तो चेहरे से होता है ना ही दौलत से होता है, ये तो दिल से दिल तक का एहसास है जो जिंदगी भर एक से ही होता है। दोस्तों शुरू की घड़ी में 7:55 हो चुके हैं और रिंकू को इस वक्त अलविदा कहना पड़ेगा आपको, लेकिन आपके लिए छोड़े जा रही हूँ एक गीत और उसके बाद आरजे प्रीति मुरारकर आपके साथ रूबरू होंगी। तब तक के लिए सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में सुनते रहिए ये गीत और इनको कोई इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: रेनबो पर आप सभी का स्वागत करती है आपकी दोस्त प्रीति, लेकर आई है कार्यक्रम छायालोक। क्यों ना आज की शाम की शुरुआत एक मुस्कान के साथ करें, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, जिंदगी है एक नई उम्मीद, हर पल एक नया अवसर और हर रिश्ते में छुपी एक खूबसूरत सी कहानी है ना।

107 FM रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति लेकर आई हूँ आपका मनपसंद कार्यक्रम शायलोग। और आज आप हम तक पहुँच सकते हैं, हमारा नंबर है 2213-1341। ये नंबर डायल करके आप हम तक पहुँच सकते हैं और अपने मनपसंद गीत को ज़रूर सुन सकते हैं। और

किसी खास को खास बना सकते हैं, है ना। बस फोन नंबर मिलाने भर की देरी है और उनसे कहने भर की देरी है कि तुम मेरी जिंदगी में हो, इसके लिए शुक्रिया।

वक्त तो चला है 8:14:34 और हमारे पास फोन आया था शांतनु घोष का बोई खाली से और उन्होंने सुनना चाहे कयामत से कयामत तक फिल्म से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में एक बेहद ही खूबसूरत सा गीत। और ये गीत सुनाने से पहले मैं ज़रूर कहूँगी कि कभी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मिलता ही है जिसके साथ रास्ते आसान से लगने लगते हैं, है ना। फिर मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है सफ़र, क्योंकि साथ में होती है दोस्ती, भरोसा और वो अनकहा अपनापन जिसे शब्दों में बांधना बहुत ही मुश्किल है। और जब बात हो ऐसे ही किसी हमसफर की तो एक गीत अपने आप याद आ ही जाता है।

कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम भूलना तो चाहते हैं, लेकिन यादें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। वक्त आगे बढ़ जाता है, लोग बदल जाते हैं, मगर दिल के किसी कोने में कुछ नाम हमेशा ठहर जाते हैं। और फिर कभी कोई गीत उन पुरानी यादों का दरवाजा खोल ही देता है। जी हाँ, अभी मैं जो गीत सुनाने जा रही हूँ, सुप्रिया की फरमाइश पर, जिन्होंने हावड़ा से फोन किया था, तो उन्हीं की फरमाइश पर चलिए हम सुनाते हैं सिंदूर फिल्म से इस गीत को।

107 एफएम रेनबो में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोग अपने दोस्त प्रीति के साथ। और कुछ पल ऐसे भी होते हैं जब मन किसी बंधन में रहना नहीं चाहता है ना, बस यूं ही उड़ते रहना चाहता है, कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में, नई राहें, नए रंग, नई खुशबू और हर पल एक नई तलाश। शायद दिल भी कभी कभी एक आवारा भंवरे की तरह होता है जो फूलों से ज्यादा उनकी खुशबू की तलाश में भटकता रहता है। समझ ही गए होंगे कि मैं किस गीत के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, इस गीत की फरमाइश लेकर आए थे कौशिक दत्ता बेगमपुर हुगले से। तो आइए सुनते हैं सपने फिल्म से इस गीत को।

वक्त तो चला है 8:43:19 और अभी आपने जो गीत सुना अशोक कर की फरमाइश पर हमने आपको सुनाया प्रेम रोग से इस गीत को। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक शब्द है जिंदगी, बिल्कुल छोटा सा शब्द है ना, लेकिन अपने भीतर पूरी कायनात को समेटे हुए। कभी लगता है अभी तो पूरी जिंदगी सामने पड़ी है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कहना भी है और बहुत कुछ पाना भी है, लेकिन जरा ठहर जाइए क्योंकि कल की क्या गारंटी है, आज है यही सच है, अभी है यही हमारा समय है और अगला पल उसका भरोसा किसे है। कहते हैं कि पल में जीवन पल में मृत्यु, कितनी छोटी सी बात है लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई शायद यही है। और हम भविष्य की योजना बनाते बनाते है ना वर्तमान को एकदम भूल से जाते हैं। कभी खुश हो लेंगे, कभी समय आ ही जाएगा और अपने अरमान पूरे कर लेंगे, और ये किसी दिन का इंतजार न जाने कितना आगे निकल जाता है। तो जिंदगी आज है और इसी सफर को आज ही इंजॉय कर लेना चाहिए।

वक्त तो चला है 8:53, तो क्या कहें जाते जाते। चलिए कुछ तो कहूंगी जरूर, क्योंकि जिंदगी हर दिन हमें एक नया पन्ना देती है। बीते हुए पन्नों को बदलना हमारे हाथ में तो नहीं, लेकिन अगला पन्ना किस रंग से भरना है ये जरूर हमारे हाथ में है। इसलिए मुस्कुराइए, अपनों के साथ समय बिताइए, अपने सपने को थोड़ा और करीब लाइए और छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ज़िंदगी की खूबसूरती किसी बड़े मौके में नहीं बल्कि अक्सर इन्हीं छोटे छोटे पलों में छिपी हुई रहती है। इसी उम्मीद, इसी मुस्कान के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। फिर मिलेंगे एक नई शाम, एक नई बात और कुछ नए एहसासों के साथ, और छोड़े जा रही हूँ आपके पास आनंद राज आनंद को।